कने वे सचिया बाद जा बिन से बाप घने वे पैसे पारे मगर कोई तारे वायरी पैसे

सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई तुद जीवड तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई सुरनाई।

गरीब नवाज बादशाह महाराज की तरस किताब जिन्हें आप जी ने तरस किताब महाराज के बच्चों पासों कीर्तन की हाजिर करवाई रोम रोम शखाना कीर्तन कर दिया बेंद प्रकार दी कीर्तन कर दिया बेंद प्रकार दी भुलना बख्श नहीं सतगुरु जीओ समझ बख्शिश करनी चढ़दी कला उच्चा सुचा जीवन बख्शिश करना महाराज जीओ नितनेम दिन दाता बख्शिश करना सबना दिया मनोकामना भावनावान इच्छाओं पूर्ण करनिया कीर्तन वजो शब्द भेट माया हाजिर की संगतां ने संगतां दिया मनोकामनावान भावनावान इच्छा पूर्ण सतगुरु जीओ सेवा लेके चलाना माया च बरकतां बख्श करना वृंदावन यात्रा सफल ली करनी।

0: गोपीनाथ गुजरा गोपाल सब तेरे चार बुढ़ी के नाम मध्य नहीं अपने है लगा मन बात भवर और टेर को कन्हैया नाम भगत को बने रजो नि कहि अत बदल गुड़ गुड़ पीता ना गुड़ता को फेर बाबे पूजा तना तनता को रख रही अपने हसन लगा के वैसे बाल देखता दीन दयाल पैरी सा सदा व्रत काल दीन दयाल तेरे हाथ खड़ा बाबा योगी लटक हरि सती आते बड़े बाबी जागरी ध्यान के काम सच के बारे में अपने चार हाथ खड़ा दिल की कसम तन हो पावक पावक हो पालो को के पावक हो के ना पावक हो पालो को के दानो फने जे दानो ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के ना पावक हो के
1: जो

जहाँ पात्र तहाँ नारको बंद कर मारा था मित्र तहाँ नारको बंद कर मारा था प्यार कर चेना
जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धूम दुकारन द्रप मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनुज मदंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रते अष्ट भुजे जय जय होसी मै कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारन धर्म धुजे अष्टाष्ट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रशासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाहे अगमता एक वृते जय जय होसी मै का सुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उतारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण वितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनले संकटि निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तुम तबे दुख दोग दहंती जाल जयंती आद अनाद गाद अछे सुतता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी शास्त्र प्रकर खण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंत रंगण तेच सरे करकसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमन के हर लंके आद अधंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सुंभ चक्र निसुंभ थे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभ्र सुवासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी भेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनाद अगाद उर्धंग घंट का बिराजे रुणजन बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग कोकल सुन लाजे किल विजय सुख बराजे मद उंग दुर्जन दल दझ मंथन रिझ सब न भजय रोहरण जय जय होसी मै का सुर मंदन चंड चकर्दन आद उंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन क्रोध क्रूर बिते धूम राज विध्वंसन प्रलय प्रज्वंसन जग विध्वंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मतंथी दोष प्रताहन गाढ़ मते जय जय होसी मै का सुर मर्दन आज गाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदरंगी अगाद गते बृढ़ लाज विहंडन चक्षुर दंडन तेर चंडन आद वृते सुर नर प्रतपारण पद धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होसी मै का सुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानी प्रकरखण सर्वर वर्खण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाद बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अगाद वृते दुग दो प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण स्वत सरे सारंग सनाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल ब्रह्माने संत जमाने आदंते
जय जय होसी मैं कासुर मर्दन सात प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली ज्योत अतिली तुंज मते अष्टाय चमकण छत्र झमकण दामिन दमकण आदवृते डुगडुगी दमंक बाग बबंक भुजा फरंक सुध गते जय जय होसी महकासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पद धारण एक भटे पापान विहंदन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवारे पद धारे मुंड मथे जय जय हुसी मह कासुर मर्दन धूम्र विदंसक आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दान अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरखण दुल दर्द धरखण अतुल अमरखण धर्म धुजे धूमराज विध्वंसन श्रोण चुनसन सुम्न पात निसुम्ब मथे जय जय हुसी मह कासुर मर्दन आद अनिला गाद कथे तौब्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जद्दब अभूतन भय अनंत कहो जथा वत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद भय अभूतन भय दयाल दाता दुरन दुख दोगर हत जह नेत नेद सब भेद कहत कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जा अनंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंता है कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सासुर सिवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अनछज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंत अद भय अनास सब रोग रह सब रोग सोग ते रहत रूप अन भय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल तल प्रभाव सर्वत्र सा जय जात पार नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी ना जय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेक कह नाम तास है कवन जा जय सत्र मित्र ने पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जिंदगी करत पाल उर्दंग विरा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनशेज तेज अनभिज अदाग जल तल मही पंतन दुरंजय नेत ने निधन उचरंत पायो ना जाय जय पैर पार दी नान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुकी आदुआर कई वेद व्यास ब्रह्मानंद कई जय जय नेत नेत निधन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर संतु बार गनीमन गारे पच पशु नग नाग नराधिप सर्व समय सबको व्रत पार फोकत है जल मै थल मै पल मै कल कई नि करम बिचारा दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हर दात है तू दोखन को दल दुजन के पल मै दल डारे खंड खंड प्रचंड बहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सक पदमापत वेद कते भेद उचार रोज ही राज लोग राज रोग रोहान की रोजी न टार कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भगवान बनाए देव देव खपे अमेव ना भेव लखे भ्रम सिंवर माए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव तके कर हाथ नाए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सिंह केन्द्र श्री पद्मापद पाए आद अनंत अगाध अदवेक सो भूत भवेक भवान अभय है अंत भी नातम आदाग दोग छिद्र अच्छ है लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभु है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्रीपद मापत ए है कामना क्रोध ना लोभना मोहना रोगना सोगना भोगना भय है दे विहीन सने सबोतन नेह भ्रक्त अगह छह है जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्रीपद मापत ल है रोगंते अर्सोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक छला दिखाओ तो अनेक ना लागन पावे राखत है अपनो कर दाय कर पाप संभूहन अभेदन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम काज पताल रसातल जज भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नी पार प्रबाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही कुजिया सुर हार परे हाथ नावे
नारद से चतुर आनंद से रूम नारी से सब हूँ मिल गायो भेद गते बना भेद लख्यो सब हार परे हाथ न आयो पाए सके नी पार मा से सना सनातन ध्यायो ध्यान धारो तह को मन में जह को अमितो सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान भेद पाए सब पच हारे भेद न पाए सके हो अनभेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना सागना

अंत के धाम सिधारे। तो प्रसाद कबित अत्र के चलिया छे छत्र के धरिया छत्र धरे के चलिया माँ सतरन के साल हैं। दान के दिवया माँ मान के बड़े अवसान के दिवया कटैया जम जाल हैं। जोध के जितैया व्रत के मिटैया माँ बद के दिवैया माँ मान हुके मान हैं। ज्ञान हुके दाता ज्ञान हुके ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हुके काल महाकाल हुके काल है। पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय ध्यावे गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना कितेक बांधे अरब के अरबी आराधे तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मराठा मंगले तेरी मन सो तपैसा करे दड़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फेरे हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलते हैं। रो के रोहिले मांग देश के मंगेले पीर भंग सी बुंदेले पापुन को पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस नी आवे तिब्बती ध्याय दो दे के दलत है। जिन्हें तो है ध्याय तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को श्रेय दानवान को महद गंग दान को अभेस कहियत है। रंग में रंगीन राव रूप में प्रवीण और काहू पे अधीन सात अधीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर विद्या के उदारे अपार कहियत है। हाथी की पुकार पाले पाछे पहुंचात ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्रद्वार कहते ब्रह्मा में उचार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है। कहते ससरासी कहते सूरज प्रकाशी कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कहते महादीन कहते व्यासे प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जाति कहियत है। करते हैं विचार पहना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पार अवार पाइये न पार ते पार अपार कह बखानिये। अद्वे अविनाशी परम पूरन प्रकाशी मां रूप होके राशि है नासी कह के मानिए। जंत्र हुना जा जा की बाप हुना मायता की पूरन प्रभागी सो छटा के अनमानिए। तेज हुको तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानिए। तेज हुको तरह के राशि को सारे के शुद्धता घरे के शुद्धता की सार है। कामना की खाने के साधना की सहने के भक्ता की बाने के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप को रूप है को मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारे के साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के क्रुद को अभूत के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा के खुबी को दिहिंदा गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है। काल हु के काल के सतरन के साल के मित्रन को भोगते के वृद्धता की वासी है। जोग हु को जंत्र है के तेज हु को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरन प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता को वास है के बुद्ध हु को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचाए मान को दिवैया जम जाल को कटैया कामना कर है। त्रेज को प्रचंड है खंडन को खंड है भैपन को मंड है के स्त्री है ना नर है। विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है। पाइये ना पार पारा बार हुको पाजा को कीजा विचार सो विचार को निवास है। हिंगला हिमालय गावे हब सी हलबी धावे पूर्वी ना पावे पूर्वी ना पार पावे आशा ते अनास है। देवन को देव माँ देव हुके देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण के सेवका धीन कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हुके देव नाथ भूमि के भुजिया मुहया मह बाल के। राजन के राजा महा साज हुके साजा महा जोग हुको जोग है धरिया ध्रुम छाल के। कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की साधी के काल है कुचाल के। छीर कैसी शिरावत छाज कैसी छतरा ने छपा कैसी कैसी छाप कालिंद्री के कुल के। हंस निशी सिहार हूँ हुरासी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सेंध रूल के। परासी पलाव गोर पलासी पलाव गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंग बानी के रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ की रति हारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कलाश कमाव गण काशीपुर सी सासी सुरंगावानी के सोहियत है। हिमासी हिमालय हावसी हल्लब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रवासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार विकांसी बुलंदाबाद की रति हारी की उजियारी सोहियत है।
फरासी फिरंगी फरासी इसके तुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गायत है। बखरी खंदारी गोर गखरी कर दे चारी पौन के हारी तेरो नाम थी आयत है। पूरा पलाव काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है। पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ की रति हारी को ना पार पाई आते है। तो प्रसाद पादड़ी छंद अदवै अना शासन अटोल अदवै अनत उपमा तो अच्छा स्वरूप अव्यक्त नाथ आ जान पाओ सर्वंग प्रमाद। जत महीप बंतन प्रफुल्ल शोभा बसन जहत प्रडुल बंतन दुरंत खग मृग महान। जत प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लहत मोर सिर ढुरै जान मन मत चौर कुजरत कमाल

रो संग ब्रज करुणा निधान, जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान, बन तन महीप जल थल महान, जाता प्रसो करुणा निधान, जगमगत तेज पूरन प्रताप, अंबर जमीन जह जपत जाप, सातो आकार सातो पता।

जी गुरु गरीब निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान की हाजरी अपन गुरु की संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेनत मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु जी आप नाम जन कृपा मेरे मत बख्श देर नाम दे दाल कर यात्रा।

माए सचा साहिब सचै नाहि रहाउ सचे नाम की तल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा न होवै घाट ना जाए

को होय। जे वडे आप ते वड तेरी दात, जिंदन कर कह कीती रात। खसम वसा रहते कम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनाहु करौ गुर पास, हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई।

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै तृपतास है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीवै दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई।

दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अद्भुत भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाशत फल पावे सोई, दोख नात सह ब्यापत कोई। अड़ल सुन गुंग जो याहे सो।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत। स्वर्ग बा स्वर्ग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल हुई आद ब्या छय सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद कर

कबीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आख तर नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानियो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो श्री असुपान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्य दो।

जिसका सब अधारो, जे को खावै जे को भुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लगतरिय।

0: गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब
1: धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब
0: धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब

0: वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।